0: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
1: Get that Toyota electric feeling with the all-new, all-electric Toyota Urban Cruiser. Available with 0% APR representative and £1,500 deposit contribution. And save £1,500 with the Toyota Electrified Saving. Visit your nearest Toyota centre. Price from £299.95. Available on Toyota PCP when financed through Toyota Financial Services by 30th of June 2026. Optional final payment. Indemnities may be required. See website conditions apply.
2: Noticed a change in your hearing? Well, get a hearing check from Specsavers. Oh, not sure where to start? Well, we're very flexible. Book one online, on the phone, on your lunch break, on Saturdays, on the same day if you're lucky. Oh, you only miss the odd word. But what if the odd words you're missing are nice ones like love you, or important ones like duck? Oh, too expensive, is it? All right, we like you. We'll do it for nothing. For free hearing checks, should have gone to Specsavers.
3: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है. ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियां, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर. सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड, कैंटन रोड, और 66 मोनार्क परेड, लंदन रोड, मिचम. फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियनफ्यूनरलकेयर.com.

0: The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
1: ZTV HD पर देखिए तुम से तुम तक।
2: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
1: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
3: आर्यभट्ट अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
2: मैं ही राजीव भाटिया।
1: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
0: एडवर्टाइज ऑन द UK's नंबर वन कमर्शियल एशियन रेडियो स्टेशन। Call the Sunrise Radio sales team today on 020-8574-7777. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.

0: The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
1: ZTV HD पर देखिए तुम से तुम तक।
2: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
1: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
3: आर्यभट्ट अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता, तू कौन है और तूने क्या किया है।
4: मैं ही राजीव भाटिया।
1: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर, अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 app।
0: द सनराइज ब्रेकफास्ट शो ब्रॉट टू यू बाय वेल बेबी एंड वेल किड, आइडियल vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.

0: House.
1: शबनम साही,
2: हंसते हुए आते हैं सब, फिल्म को देखने के बाद रोता हुआ जो जाएगा ना, वो सिकंदर का मुकद्दर जाने मन कहलाएगा।
1: नेक्स्ट ऑन सनराइज, सनराइज रेडियो, द सनराइज ब्रेकफास्ट शो ब्रॉट टू यू बाय वेल बेबी एंड वेल किड, आइडियल विटामिंस फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम विटाबायोटिक्स, द यूकेज नंबर वन विटामिन कंपनी, अवेलेबल फ्रॉम फार्मेसीज, सुपरमार्केट्स एंड विटाबायोटिक्स.com. फॉर नंबर वन वेरिफिकेशन सी विटाबायोटिक्स.com.
3: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism, and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 0208092944 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
4: Hey!

0: नाना कभी हमको तुझसे ज्यादा प्यार है. गिविंग योर डॉटर अवे इन मैरिज, व्हाट एन इमोशनल मोमेंट इट इज फॉर ऑल पेरेंट्स. इन फैक्ट आईड लाइक टू थिंक रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू हैव डॉटर्स और सन्स, योर किड्स लीविंग होम, दैट्स एन इमोशनल मोमेंट. व्हाट डे इज इट टुडे? 14th ऑफ मे. आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर द एंड ऑफ जून व्हेन बोथ माय बॉयज आर गोना बी बैक होम फॉर द समर. डोंट वेट. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, शाहिद मालिया. करण जौहर की एक बात मुझे माननी पड़ेगी. आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ दिस फिल्म, एज एनीवन हुज हर्ड मी रिव्यू दिस फिल्म ऑन द शो नोज. नॉट द बिगेस्ट फैन एट ऑल. लॉजिक इसका मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया. नॉनदलेस, अपनी हर फिल्म में करण जौहर हैज द नैक ऑफ पुटिंग सॉन्ग्स दैट रियली हिट द स्पॉट. आई विल गिव हिम दैट. Omar has sent me the recipe. It is an egg muffin variation with tomatoes, onions and a bit of spice. Sounds absolutely delicious.
1: Listener's choice, brought to you by Colors TV.
0: Kids, ready for today's Hanuman story of the day? To save Lakshman, Hanuman carried an entire mountain because he couldn't find the right herb. Lesson, when in doubt, give your best effort. Don't miss the next adventure. Watch Legend of Hanuman every day at 5:30 PM only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. I love the fact that so many of my listeners are foodies, just like me. Jagruti from Mum's Menu, thank you so much for sharing that. That looks beautiful. You made Pan-Asian food this week, your first attempt at making sushi. You know what? I cannot vouch for the taste because I have not tasted it, but it looks so pretty, so pretty.

0: The Sunrise Radio Traffic and Travel Update, brought to you by GDK. Hungry? Go large. Doner boxes now available in regular and large. More flavour packed in. GDK. Kebabs done right.
1: The M4 westbound between junction 17 and 18. Road management currently active following an earlier accident. One lane closed. Normal traffic conditions after 1 p.m. That's the M4 westbound between junction 17 and 18.
0: The Sunrise Radio Traffic and Travel Update, brought to you by GDK. Hungry? Go large. Doner boxes now available in regular and large. Big box energy. More flavour packed in. GDK. Kebabs done right.
1: Taking you back to 1956. Raj Kapoor aur Nargis ki film Chori Chori ka ye gana Manna De aur Lata Ji ki awaaz mein. ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे ये चांद प्यारा प्यारा क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा. यहाँ भी आप सुन रहे हैं आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच. व्हाट एन इंटरेस्टिंग चैट वी एंडेड अप हैविंग टुडे. ओह नो टू डेज आर द सेम, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस जॉब. गुड मॉर्निंग.

संभल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।

0: And Jess?
1: Tell Jess to meet us at the train station an hour earlier, though. She's always late.
0: Make it happen with Southeastern Group Save. Save one third on the price of train tickets when you travel at off-peak times in groups of 3 to 9 adults. Buy direct from our app or website with no booking fees. Terms and conditions apply. Find out more at southeasternrailway.co.uk/groupsave.
2: Southeastern.
3: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
4: जॉय आरुकास पेश करता है एक्सक्लूसिव 35% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड, डायमंड एंड प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी। साथ ही ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर पाएं 0% डिडक्शन और खास अपने NHS नर्सेस के लिए हु हील विद देयर हैंड्स एंड केयर विद देयर हार्ट्स। जॉय आरुकास पेश करता है फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। बस अपना वैलिड ID दिखाइए एट द टाइम ऑफ परचेज। ऑफर केवल 7 जून तक। जॉय आरुकास, वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर।
5: You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up, and
6: it could be you.
5: Yeah, what he said. Lotto. From the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
7: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
8: ZTV HD पर देखिए तुम से तुम तक।
9: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
8: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
10: आर्यभट्ट धनर अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
11: मैं ही राजीव भाटिया हूँ।
8: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 बजे ZTV HD पर, अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 app।
12: Neuromol Dual Action contains the power of ibuprofen
13: and the strength of paracetamol combined together
12: to provide faster, longer lasting, more effective relief than regular painkillers alone. Hit pain hard
13: with Neuromol Dual Action Pain Relief.
12: Contains ibuprofen and paracetamol for pain not relieved by regular painkillers. Ibuprofen or paracetamol individually.
13: Always read the label.
14: Drive on sunrise with Pepe's Piri Piri. Pepe's have over 250 stores nationwide. There will be one near you. Order delivery or collection tonight for a treat.
15: Sunrise Radio. Happy birthday to legendary American filmmaker and philanthropist George Lucas. And for those celebrating their birthday today, let's celebrate together with a cake from the Cake Box.
16: Birthday greetings from the Egg-Free Cake Box. Cake lovers, this one's for you. The new limited edition crunch cake has landed at Cake Box. Chocolate sponge, Nutella layers, chocolate cream, topped with a crunchy Nutella cornflake mix and colourful chocolate mini eggs. Perfect for any celebration. And you can personalise it with your own message. Order in-store or online at cakebox.com. Collect in an hour or get it delivered.

0: On today's trio, we had Kareena Kapoor Khan, we had Shahid Kapoor, and Honey, Dilnaz Irani.
1: Honey, जब जतिन ने मुझे प्रपोज किया तब दो अजीब सी बातें हुई। जो रिंग जतिन ने मुझे दी, उसका साइज बड़ा था। उसने एंगेजमेंट रिंग गलत फिंगर में पहना दी।
2: So what, Priya? After all, it's the thought that counts. इमी से अलग हुए तुम्हें 3 साल हुए हैं, और अब तक तो वो तुम्हें बोल भी चुका होगा। रही डेस्टिनी की बात, वो तो तुम मुझसे करना ही मत।
3: प्रिया, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है, झूठ बोला है, दुख पहुँचा है। मुझे तुम्हारी डायरी पढ़ने का कोई हक नहीं था, बट बिलीव मी प्रिया, मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहता।

0: Artist of the Week with Sony Max. Romance, drama, heartbeats, don't miss Sayara, Tere Ishq Mein, and more non-stop romantic hits. Showing all day this weekend, only on Sony Max.
1: Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Pepe's, something for everyone. Grilled vegetarian options, different flavors, halal, a light snack or something for tea. Order Pepe's.
0: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
2: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
2: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
2: और हमारे सोने की वैल्यूएशन?
3: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
4: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना साडा सोना,
3: वसीम ज्वेलर्स।
5: जी टीवी HD पर देखिए तुम से तुम तक।
6: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
5: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
6: आर्यवर्धन अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
7: मैं ही राजीव भाटिया।
5: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर, अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
8: नाउ विद लिटिल प्लस, कलेक्ट पॉइंट्स दैट यू कैन टर्न इनटू पॉसिबिलिटीज। Pepper abilities, pasta abilities, burrata abilities, kayak abilities. So collect and spend your Lidl Plus points on hundreds of rewards or money off coupons. Lidl, more to value. Exclusions apply. For T's and C's, lidl.co.uk/LPTV, 18 plus GB only.
1: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020-8574-7777. Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Now is the time to download the Pepe's app. We're giving 10% discount to every first order. You heard it right. 10% off with every first order with the Pepe's app.

0: लपेट
1: रीमेक
0: जान तमन्ना गिदर
1: फ्रॉम द फिल्म फन्ने खान
0: पास आओ तो चैना जाए
1: बकुल इट्स नॉट अ लैंड रोवर राज इन वेम्बली यू गॉट इट द सुब्रू थिंक्स इट्स अ हार्ली डेविडसन इट्स नॉट वंस अगेन इन द राइट डायरेक्शन अल्विन इन बेडफोर्ड यू गॉट इट राइट Serena, you got it too. Final clue for you, right? In my older legendary models, I was known for having my gear shifter on the right side and my brake on the left, all right? The opposite of almost every other motorcycle in the world. And this particular model has the longest production run of any motorcycle model in history. But what model is it? We know it's a motorbike now, so I've just said it. Which motorbike are we talking about?
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
3: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए यूनिक मसाला चाय इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार
2: My mom started cooking with Khanam Ghee in the 70s. Dal Makhani, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using Khanam Ghee for 3 generations. The aroma, that creamy melt in your mouth. Satisfying taste. Ah, now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
4: Mom, is the dinner ready? As I can smell the Khanam Ghee.
2: Khanam Ghee, the legacy lives on.
5: Khanam Ghee, a brand from

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।